0: यू आर योर नंबर वन।
1: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। अल्मेरा और द्रोंटन से परिवार गोपी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल के आयु में एनन नेहंत खियार और बेटी सिंथिया गोपी की मां, दामाद रंजीता सार्फी के सास, आर्मांडो भोला और शरण भोला के नानी, संगीता भोला गयाधर की ननिया सास, अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस्ट्रात की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। पारामारिबो में पहले फ्लमिंगो स्ट्रात के निवासी थी। अल्मेरा और द्रोंटन से परिवार गोपी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल की आयु में बेटी सिंथिया गोपी की मां, दामाद रंजीता सार्फी के सास, आर्मांडो भोला और शरण भोला के नानी, संगीता भोला गयाधर की ननिया सास, अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस्ट्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की

आज रात के 6 बजे से 7:30 बजे तक फनाफंत फन जैसूर तो थालफाख ऐतफर्ट सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंद्रदाख 4:30 किए जाएंगे वेस्टखार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। अलमेर से परिवारशक कौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल के आयु में एनन नेखंतखियार औत नातिन रेशमा शकौरी गोपाल की नानी और न दमाद विनोद शकौरी की ननिया सास रिशानी और रितिका शकौरी के पर नानी आम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। अलमेर से परिवार शकौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नेखंतख यार औत नातिन रेशमा शकौरी गोपाल की नानी न दमाद विनोद शकौरी की ननिया सास और लड़कन रिशानी और रितिका शकौरी की पर नानी आम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम के मुर्दालय ओक मिरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंदरदाग हालफ फिर किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मिरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 45 75 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

Oud je boudoir 17 tarik doen vandaag 17 juni kom. Al meer keer en wel Anand en Shanta Chandrika Singh Batiswa 32e wie wacht ki jenti hai is khush ke mauke par ek dusre ke liye dilo jaan se pyar mohabbat ke saath nahma ko farmaish ke chali program mein kaun nahma hum aapko sunane ko ja rahe hain जो कि आनंद मांग के है अपनी प्यारी प्यारी लीफ लीफ फ्राउ शांता के लिए एंड नाम शांता फॉर लीफ लीफ मान आनंद के लिए 32वां विवाह की जयंती के खुशी के मौके पर दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये नगमा फरमाइश करें

उजाला रेडियो के जरिए आपने ये शानदार सिनेमा सुने हैं जो कि फरमाइश किए गए हैं नाम आनंद चंद्रिका सिंह फो शांता चंद्रिका सिंह। इन दोनों की आज 32वां विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर नाम आनंद फो लीव लीव फ्राउ शांता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ पेश किए गए। यहाँ तक कुछ फरमाइश हमने पेश की है आज के प्रोग्राम में। आनंद एंड शांता नाम से हेल टीम फन उजाला रेडियो फन हार्ट गेफेलिसिटेट आप दोनों के 32वें huwelijks jubileum के खुशी के मौके पर एंड नामस अल ये लीफे लीफे किंडरे नामस पूजा सपना जया एंड व्यास की तरफ से एंड दो प्यारे प्यारे दामाद हैं रात में ये और सूरज की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामना पेश किया जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत के साथ बधाइयां शुभकामना पेश है।

तो कैसे नींद आए हेमंत कुमार की आवाज में आप सुने फिल्म का नाम बिन बादल बरसात और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम आरंभ कर चुके हैं और आपको भी स्वागत है सुनने के लिए।

जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए तब तुम याद आए, लता जी की आवाज में। आप सुने फिल्म का नाम तकदीर। एक बार फिर लता जी हिस्सा ले रही है।

से बलम घर आए गीत आप सुने लता जी से और फिल्म का नाम आवारा। उजाला रेडियो है ये।

सूरत आपकी सुभान अल्लाह। फिल्म छलिया से, हाँ फिल्म छलिया के गीत मुकेश जी की आवाज में आप सुने।

लता जी की आवाज़ और गीत आप सुने फिल्म नागिन से। हाँ, फिल्म नागिन से, और ये है उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और आप लोग अब कुछ देर तक प्रोग्राम को जो सुनेंगे, इसमें विशेष करके कुछ पुराने गीतों पेश है।

0: ओ हुजूर अब हुजूर आओ तुम्हें सितारों में ले चलूं। और गीत आप सुने आशा जी की आवाज में, फिल्म किस्मत से, और संगीतकार थे उपेन नय्यर जी।
1: आपके
0: मोहम्मद रफी साहब।

आज नया नूर है, अब मेरा दिल मचल गया, तो मेरा क्या कसूर है। आप गीत सुने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएगी। ये उजाला रेडियो है।

आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब हम तुम्हें कहते हैं। साजन की बाहों में, फिल्म का नाम साजन की बाहों में, ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, पुराने गीतों के साथ।

अब दो दिलों की मुश्किल आसान हो गई है, आपस में दो दिलों की पहचान हो गई है। मोहम्मद रफ़ी एंड आशा जी से गीत को आप सुने, फिल्म का नाम पूजा के फूल।

और अगर दिल कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या करोगे? फिल्म का नाम कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, और ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, तू जाने है तो इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें उजाला.nl पर। एंड न्यू पुराना सोना।

है ना सुंदर गीत। तलत महमूद एंड लता जी से प्रोग्राम में आप गीत को सुने। फिल्म का नाम उसने कहा था, उसने कहा था। अब मुकेश जी हिस्सा लेंगे।

सब कुछ सीखा हमने, ना सीखे होशियारी, तो रह गई ना अनारी। मुकेश जी की आवाज में आप सुने और फिल्म अनारी का गीत। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। या तू जाने है तो

0: दे। अरे छोड़ दे सजनिया,
1: नैनोवा की दूर पहले जोड़ दे।
0: बहुत पुरानी फिल्म नागिन 1954 की फिल्म 1954
1: पहले जो
0: और
1: या
0: गाने वाले लता जी एंड हेमंत कुमार।

गम से ना घबराना। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म का नाम तावड़ हाउस। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, कुछ पुराने गीतों के साथ प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए।

इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नीखन तखियार और पति श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी की पत्नी लड़कन सामी रॉय जेरी शिरली क्सिंथिया और शकीता की मां जगदीश गोपाल रंजीत असारफी आनंद रघुनाथ काला गोपी उषा गोपी और अनिता हरकिसुन के सास 13 लड़कन के नानी और आजी और 19 लड़कन के परनानी और पर आजी। आम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, पारामारिबो में पहले फ्लामिंगो रात के निवासी जो थी। आम्स्टरडम से श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नीखन तखियार औत श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी की पत्नी लड़कन सामी रॉय जेरी शिरली क्सिंथिया और शकीता की मां जगदीश गोपाल रंजीत असरफी आनंद रघुनाथ काला गोपी उषा गोपी और अनिता हरकिसुन के सास 13 लड़कन के नानी और आजी और 19 लड़कन के परनानी और पर आजी। आम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, पारामारिबो में पहले फ्लामिंगो रात की निवासी थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज रात के 6 बजे से 7:30 बजे तक। फनाफन फंसूर टोथालफाक एटफर्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम उस दौरप में और अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंदरदख हलफीर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम उस दौरप में।

0: posted.
1: अल्मेरे से परिवार शकौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नेखंतखियार औत नातिन व्रेश्मा शकौरी गोपाल की नानी न दमाद विनोद शकौरी की ननिया सास रिशानी और रितिका शकौरी की परनानी अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेन स्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तो की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अल्मेरे से परिवार शकौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नेखंतखियार औत नातिन रेशमा शकौरी गोपाल की नानी न दमाद विनोद शकौरी की ननिया सास रिशानी और रितिका शकौरी की परनानी अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेन स्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक Uitvaart Centrum Westgaarde in Moerdalei, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp mee. Arthi ke dahakriya, kal bife ke din mein 3:30 baje, morgen donderdag 3:30 kiye jaenge. Westgaarde Crematorium, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp mee.

तेरा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से अजय गोपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल के आयु में इन निहंत खियार औत अजय गोपाल की नानी शरोजना गोपाल की ननिया सास ऐलाश सिर्फियाश और शयाना गोपाल के पर आजी अम्स्टरडम लुई क्रेस्पेन स्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अलमेर से अजय गोपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में इन निहंत खियार औत अजय गोपाल की नानी शरोजना गोपाल की ननिया सास ऐलाश सिर्फियाश और शयाना गोपाल के पर आजी अम्स्टरडम लुई क्रेस्पेन स्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक अवितफर सेंट्रम वेस्खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन डोंदरदाग 4:30 किए जाएंगे वेस्खार्दे क्रीमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 45 75 06 57 51 45 75। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

कितना मोई गाना है, कितना मोई से भी गाय से राज गणेश की आवाज में भी आपने सुने उजाला रेडियो पर सुन वालों पेश किया गया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और इस जीवन में ना मिलेगा तो हम फिर जन्म ले में मिल खातिन उजाला रेडियो है। वेलकम ऑफ दिस वोंगजाखमिदा 17 तारीख जून का प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग आज का समाचार आपसे बताने वाले हैं कि क्या भय रहेगा या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एंड नतीजा है वो लुफ्त होने वाला, और आज है सेफ्टी यूनिट, बड़ा मोई दिन है आज। नेम ये कॉफी ऑफ चाय दबाए एंड लाइसर ना दिन में कि चलते चलते चलते चलते कभी ना अलविदा ना कहना, ना ना ना ना ऐसे ना करिए।

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: दिस इज उजाला रेडियो योर प्लेग फॉर म्यूजिक प्लेजर एंड अ ग्रेट ग्लिम्स
2: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है सुनने वालों और दिल को छू लेने वाले गीतों आप सुन रहे हैं।

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: सुनने वालों, आशा है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आए हुए होंगे। और अगर आप हमें फिर सुनना चाहें तो आपको पता ही है, उजाला रेडियो पर आप हमेशा हमें सुन सकेंगे। फिर मिलेंगे।
1: Hoe weet je dat die track niet goed is?
2: Nee, dat ga ik beluisteren allemaal. Maar je neemt nu op, hè?
1: Oh ja.

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
3: उजाला रेडियो सुन वालो, मैं हूं लॉर्ड महावीर। एन हेले खुद खुदा आज है बुधवार, बुधवार और बुधवार 17 तारीख जून है। हेट इसन मोईदाग, हेट वर्सन मोईदाग, और आज का दिन इसलिए खुशी का दिन है। हर एक दिन खुशी का दिन होते हैं सुन वालो। अज इन द ओख्तेंड वक्कर वर्ड एन यू कुंट एन दाग मेमाकन दन इज दैट मोई मेगेनोमन टॉक। जाना रेडियो के जरिए हम इसलिए आए हैं आज की बुधवार 17 तारीख जून है। दा हाँ वो 32 jaar terug एक नौजवान के विवाह हुए हैं, या दो नौजवान के विवाह हुए हैं 32 jaar geleden। आनंद चंद्रिका सिंह एंड शांता चंद्रिका सिंह के विवाह हुए हैं या सरकारी शादी हुए हैं। इन ईदर गफाल इस दत 32 jaar geleden। और 32 jaar geleden जबकि आनंद चंद्रिका सिंह एंड शांता चंद्रिका सिंह के विवाह हुए हैं, तो इस खुशी के मौके पर आज के प्रोग्राम में इन दोनों के लिए ये नगमा एक दूसरे के लिए पेश किया जा रहा है।

Oud boudoir 17 tarik juni vandaag 17 juni kom. Al meer keer en wel Anand en Shanta Chandrika Singh Batiswa 32e wie wacht ki jenti hai is khush ke mauke par ek dusre ke liye dilo jaan se pyar mohabbat ke saath nahma ko farmaish ke chali program mein kaun nahma hum aapko sunane ko ja rahe hain जो कि आनंद मांग के है अपनी प्यारी प्यारी लीफ लीफ फ्राउ शांता के लिए एंड नाम शांता फॉर लीफ लीफ मान आनंद के लिए 32वां विवाह की जयंती के खुशी के मौके पर दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये नगमा फरमाइश कर रहे हैं।

उजाला रेडियो के जरिए आपने ये शानदार सिनेमा सुने हैं जो कि फरमाइश किए गए हैं नामस आनंद चंद्रिका सिंह और शांता चंद्रिका सिंह। इन दोनों की आज 32वां विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर नामस आनंद फॉर लीव लीव फ्राउ शांता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ पेश किए गए। यहाँ तक कुछ फरमाइश हमने पेश की है आज के प्रोग्राम में। आनंद एंड शांता नामस तहल टीम फन उजाला रेडियो फन हार्ट गेफेलिसिटेड आप दोनों के 32वें huwelijks jubileum के खुशी के मौके पर en namens al je lieve, lieve kinderen, namens Pooja, Sapna, Jaya en Vyas Ketrafse. En do pyare pyare damat hain, Radmir aur Suraj Ketrafse. Bahut bahut badhaiyan aur shubhkamna pesh kiya ja raha hai. Pyar, mohabbat ke saath badhaiyan, shubhkamna pesh.

यहीं से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम उजाला कॉफी चाय मिदक शो। यू आर उजाला रेडियो, यहीं सुन वालों मैं हूं लॉयड महाबीर। एन हेले गुडमिदाग, वेलकम ऑन दिस वुंसडा 17 यूनी आ शाम का वक्त। कितना मोय वेर है ना, कितना बिसाल वेर हैगा। आज इस नाग 17 यूनी, आज बुधवार 17 तारीख जून का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुनने वालों। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मैथ आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में। बहुत लुख्तग ऑनवर्ड हम आपसे बताने वाले हैं। नाउ एक स्ट्रगल बीच ओवर माय एगन वर्ड। आज है 17 तारीख जून। हेडलाइंस फ्रॉम वंडाग। होंडर्डन मेंसन नाम डेल आन अ स्टिले टोग ना हेट ट्रागिशे वर्केर्सओंगेवाल इन जेलैंड वारबाय मेर्डरे स्लाग्टोफर्स फीलन। हेट WK फुटबाल ब्लाइफ नेदरलैंड बेजिग हौडन ना हेट गेलैकस्पेल फान ओरांजे टेगे जापान। अनालिस्टन कैके वूरुइट ना दे वोलगेंडे ग्रूप्सवेडस्ट्रैड आनस्टाँडे ज़ाटरदाग ओम 7 उर। एन या मेस्सी हेफ्ट गेस्पेल्ड मेट अर्जेंटिनिए आत्से बेरे से बेरे फ्रुकु फ्रुकु एन हे हेफ्ट 3 केरे गेस्कोर्ड Toena Janet Rehle, Toena de Klega, to de Klee. Adviseurs van het kabinet pleiten ervoor Oekraïne na een toekomstig bestand sneller richting EU-lidmaatschap te begeleiden. Innovatie en technologische onafhankelijkheid staan centraal tijdens een grote high-tech bijeenkomst in Den Haag. Den Haag mis. De G7-landen hebben in Frankrijk opgeroepen tot het staakt het vuren in Libanon en spreken steun uit voor het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De G7 kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor Oekraïne, waaronder extra militaire ondersteuning en strengere sancties tegen Rusland. Het Rode Kruis waarschuwt voor mogelijke voedsel- en watertekorten als gevolg van een verwachte sterke El Niño-periode. Wereldleiders spreken steeds nadrukkelijker over energiezekerheid en alternatieve handelsroute nu de geopolitieke spanningen aanhouden. Goedemiddag Nederland, welkom bij Ujala's middag Coffee Chai Show. Aaj boedwaar, de week is halverwege, ha? Beachhaftaiga. En misschien is dit precies het moment om even rustig adem te halen. Een kop koffie of chai erbij te pakken en samen te kijken naar wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Mijn Lloyd Mahabir zometeen sluit hier aan. Anand Chandrika Singh. Fijn dat je luistert. उजाला रेडियो के प्रोग्राम में हम सुनने वालों एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं और ये गाने वाला है राज गणेश के आवाज़ में हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं। सॉरी फॉर कि तो के कोई जीवन साथी मिलल हैगा या तू मांगे कोनो जीवन साथी ई जीवन में तोर ना मिलल हैगा जीवन साथी तो दोबारा जन्म लिए तो शायद मिल जाएगा मोय जीवन साथी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। राज गणेश की आवाज में आप सुनने को जा रहे हैं। गरमा मोई से सुनिए कि जन्म जन्म का साथ है।

कितना मोई गाना है, कितना मोई से भी गाय से राज गणेश की आवाज में भी आपने सुने उजाला रेडियो पर सुन वालों पेश किया गया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और इस जीवन में ना मिलेगा तो हम फिर जन्म ले में मिल खातिन। उजाला रेडियो है, वेलकम ऑफ दिस वोंगजाखमिदाग 17 तारीख जून का प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग आज का समाचार आपसे बताने वाले हैं कि क्या भय रहेगा या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एंड नतीलक है वो लुख्त खोने वाले, और आज है सेफ्टी यूनिट, बड़ा मोई दिन है आज। नेम ये कॉफी ऑफ चाय दबाए एंड लाइसर ना दिन में कि चलते चलते चलते चलते कभी ना अलविदा ना कहना, ना ना ना ना ऐसे ना करिए।

गनवा जो इस तरह से सुन गाय से गया जैसे बनाए से गया म्यूजिकवा जैसे है गया इज गोन गेवेल्डिग इट इज गोन या एन गनोट ओम नाउ टू लुइसन चलते चलते इट इज अ बीटी जैसी मार बिसाल बिसाल सुन वालो प्रोग्राम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते जाइए सुनते रहना आज का प्रोग्राम हम आपसे कल नहीं मॉर्निंग इज अमित हियर इन कॉफी चाय कल अमित जयराम रहेगा van 12 tot 1. En ik ben er vrijdag weer met koffie, chai, koekoe of wat je ook ervan wil maken van dit programma. Janam janam ka saath hai tumhara hamara. Rajesh Ganesh ki awaaz mein fir hum aapko sunate hain. Isi ke saath hum izazat chahte hain. Mujhse rahiye.

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुन वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आप सुनते रहना। चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl हर एक काम काज के लिए।

0: 6:10 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। यह है आप ही का अपना उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज मेरे प्यारे सुनने वालों 17 जून है, बुधवार की रात है और वो भी साल 2026 मौका मिला है तो मैं दौड़ के चलाया यहाँ स्टूडियो में आपका सेवा करने के लिए। और आज भी सेवा हम करेंगे रात्रि में 9 बजे तक लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मेरे प्यारे सुनवालों बैक टू द फ्यूचर आज फिर एक बार हम बनाएंगे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद जी का ऑफ 12 देवानंद साहब जी इनके मूवीज से फिर एक बार बहुत ही सारे खूबसूरत नगमाएं समेत समेत कर इस प्लेलिस्ट को सजाया और लेकर आया हूं। और ये प्लेलिस्ट से निकालूंगा एक एक हीरे और आपकी सेवा में हम पेश करने वाले हैं। तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे सुनने वालों लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम फिर एक बार हम बनाएंगे। आपको स्वागत करते हुए आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। और जिस हाल में आप हैं जहां पर भी हैं जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। आज ये प्रोग्राम सजा रहा हूं देवानंद साहब जी का, कुछ हफ्तों से हम बना रहे हैं और अगले हफ्ते जो इस महीना जून का आखिरी बुधवार होंगे 24 तारीख फिर जूनी तो देवानंद साहब जी का आखिरी प्रोग्राम भी हम पेश करेंगे। बहुत सारी खूबसूरत मूवीज में इन्होंने काम किया है और उन मूवीज में कमाल के गाने और गाने कुछ इस तरह का जो हम पसंद भी करते हैं। आज भी जब भी ये नगमाएं चलती है आप गुनगुना लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं इनको सुनते वक्त। और सभी जाने पहचाने नगमाएं जो आज सेवा में हम पेश करेंगे हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों स्टूडियो में आप अवश्य हमेशा की तरह ऐप कर सकते हो, वहां पर भी बातचीत हो सकते हैं। 020-3-9-9-0-20-3-9-9-0-20-3-9-9-0 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है। सीधे यहाँ स्टूडियो में आपका व्हाट्सएप आएंगे और आपको जवाब भी यकीन मैं अब यकीन से मैं कह सकता हूं कि आपको भी मिलेगा। और यह दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों आपके फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप भी प्राप्त करना चाहोगे तो स्टूडियो में नहीं लेकिन आप दफ्तर को मेल कर सकते हैं या तार कर सकते हैं। तार करना चाहोगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप तार कर सकते हो। दफ्तर के तार पर 020-3-9-9-0-0-7 या तो कीजिए 24 घंटे 7 दिन लगातार किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल आप मेल करें info@ujala.nl। आज का ये प्रोग्राम मेरे प्यारे सुनोला आपको तो मालूम है हर एक घंटे पर इश्तिहारे हैं, देश विदेश का समाचार, मौसम क्या हाल क्या है और सड़क पर भी क्या हाल है हम आपको सुनाते हैं हर एक घंटे पर। और आज भी अफसोस के साथ थोड़ा सा मृत्यु समाचार, मौत की खबरें भी पुकारा जाएगा उजाला रेडियो के जरिए और वो भी 7 बजे के इश्तिहारों के बाद। बरिख्त फन ओवरलैड नॉट अ कमर्शियल ब्रेक फन सेफ यूर हियर ऑफ यू आर। तो मेरे प्यारे से रोलो अगर आप तैयार हैं, मैं देखता हूं बेचैन है आप सभी के लिए गाने के लिए हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत, ये दोनों मिलकर गाएंगे काफी पॉपुलर सॉन्ग प्यार भरा रूठना मनाना सॉन्ग। कल्याण जी अनान जी है संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, जॉनी मेरा नाम का वो मशहूर नगमा आप तक पेश करने जा रहा हूं। जॉनी मेरा नाम 1970 का मूवी है, नीहतिन सीवंत ओ मेरे राजा, देर से आई और दूर से आई लेकिन फिर भी वादा तो निभाया।
1: जॉनी
2: और नकली
1: भी जॉनी, इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

मेरे राजा और खफा ना होना, देर से आई दूर से आई लेकिन मिडोरो वादा मैंने तो निभाया और देखो मैं दौड़े दौड़े चलाया। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए और वो भी कल्याण जी अनान जी की ब्यूटीफुल म्यूजिक पर। जॉनी मेरा नाम फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों आज का ओपनिंग सिलेक्शन ये 1970 में हतीन सईफ फतह का फिल्म से हमने नगमा को निकाले हैं। इनके छोटे भाई गोल्दी आनंद यानी कि विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है और देव साहब जी विद ब्यूटीफुल हेमा मालिनी जी के साथ ये फिल्म में काम किया है, जिसमें प्राण साहब भी है, प्रेमनाथ जी, जीवन साहब जी, आयुष जौहर, पटमा खन्ना, इफ्तिखार। शुभ रात्रि मेरे प्यारे सुनने वालों, ऐसा तो नहीं लगता है कि रात है लेकिन घड़ी के अनुसार के मुताबिक नटूलक रात है। स्टूडियो के यहाँ बाहर तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, सूरज अपना चेहरा अभी तक दिखा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा हवा है लेकिन लेकर, और मैंने सुना कि बहुत गर्म गर्मी आ रहे हैं, ये तो प्लान भी इनक्राक है, पता नहीं क्या क्या होगा रे।

जैसे भी हो मेरे प्यारे सुनवालों, आप नटुलक मात्र एकल जो है एक्स्ट्रा पीने के लिए पानी का ये क्लीडिंग कटून टूटत हिल खुट और लोप नीचे नत फैल सो नीत फील इन स्पन तू जाने तो ना कि हम बोले ला कि तू लेसी हो जा कुछ ना कर जाके लंगट ले जा अपन सोफा पे नहीं तद बदुले को गुए नीत मा तू जाने हम का बदुल करे ला तो बैक टू द फ्यूचर है ये मेरे प्यारे सुनने वालों लाइफ एंड आर एक्यू आर के स्टूडियो रतनराम से 8 मिनट बाकी है सरे 6 बजने में। मैं हूँ रतनराम दुलारे पांडे और बुधवार जब होते हैं तो 6 से 9 बजे दौरे चले आते हैं आपका सेवा करने लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जिनमें नगमाएं कुछ इस तरह का होते हैं पुराने यादें जिसके साथ जुड़े हुए हैं और वो पुराने यादें हमेशा मुझे वापस और शायद आप सभी को भी वापस ले जा रहे हैं उन दिनों जब ये गीत मशहूर था और कुछ ना कुछ वाकया हुआ जिसके साथ इन नगमाओं के साथ आप फिर उस दिन को याद करते हैं। तो ये यादें जो हैं मिलकर हम ताजा कर रहे हैं। फिर एक बार एक फिल्म की ओर हम आपको ले चलेंगे जबकि मेरा पैदाइश भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये फिल्म जो जिसका नाम है गाइड तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है मेरे प्यारे सुनने वालों तमाम नगमाएं बेमिसाल है और ये फिल्म का एक गीत आज हमने चुन करके रखा है शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत दलेजन पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी गाएंगे। फिल्म का नाम है गाइड मेरे प्यारे सुनने वालों और मूवी 1965 का है नीहंत इन फाइव एंड सिस्टर एस दे बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन संगीतकार

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहां भी ले जाए राहें हम संग है। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी ने गाए हैं और वो भी सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। 1965 का मूवी फिल्म गाइड से हमने ये नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, और ये फिल्म भी इनके छोटे भाई विजयानंद गोल्दी आनंद जी ने डायरेक्ट किया है, वहीदा रहमान के साथ मूवी में काम किया है। और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ किशोर साहू भी है, अनवर हुसैन, जागीरदार रशीद खान, लीला चिटनिस, प्रवीण पाओ। ब्यूटीफुल मूवी मेरे प्यारे सुनो वालों, और गाने लाजवाब बेमिसाल।

1970 की ओर आपको ले चलते हैं। 1977 फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग, ये एक पॉपुलर सॉन्ग है जो देव साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है ये मूवी में। एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग जो किशोर कुमार ने गाए हैं आर डी बर्मन, राहुल बर्मन के साथ और संगीत पर। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा।

से न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा और दिल में भी छुपा लूंगा। किशोर कुमार इनका गाया हुआ गीत आनंद बख्शी जी ने जो लिखे रोमांटिक सॉन्ग और वो भी आर डी बर्मन के साथ और संगीत पर गीत गाया गया है कि छुपा लूंगा। किशोर कुमार इनका गाया हुआ गीत आनंद बख्शी जी ने जो लिखे रोमांटिक सॉन्ग और वो भी आर डी बर्मन के साथ और संगीत पर गीत गाया गया है किशोर कुमार के जरिए 1977 निहतिन सेवन सेवन तक का फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से हमने नगमा को निकाले और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों गोगी आनंद का डायरेक्ट किया हुआ। और जिसमें देवानंद और सीमन तमन देवानंद और सीमन तमन ने काम किया है, प्रेम चोपड़ा भी है, महमूद जीवन साहब जी नदीरा धीरज कुमार दुर्गा खोटे हेलन और बिरबल साहब जी। 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 6:05 बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और जैसे मैंने कहा अभी 7 बजे इश्तिहारे हैं और इश्तिहारों के बाद अफसोस के साथ भी थोड़ा सा मृत्यु समाचार मौत के खबरें हैं जो उजाला रेडियो के जरिए भी पुकारा जाएगा। नॉट कमर्शियल ब्रेक फन सेव यूर हियर ऑफ यू आर बरिश्ते फन ओवरलेडन 020-363-0808 स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और कुछ लोगों ने ऐप किए हैं, अभी हम देखेंगे कि कौन है। और नटुलक अल्फास तंकिवेल, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतला दो ना। गीत का बोल मेरे प्यारे सुनो लो, एक रोमांटिक सॉन्ग है मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ जो किशोर कुमार गाएंगे सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। 1965 हम आपको वापस ले चलते हैं, निहतिन फिल्म का नाम 3 देवियां।

ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत किशोर जी ने गाकर सुनाए हैं सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम तीन देवियां और फिल्म 1965 का है, नीहतिन फैफन सिस्टर। अमरजीत ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर भी अमरजीत साहब जी, देव साहब जी, और सिमी का एक फिल्म जिसमें नंदा भी है, कल्पना, सुलक्षणा जी, आयुष चौहड़, यंकी दास। रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनो वालों, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक उजाला.net एंड नॉट यू लुक उजाला रेडियो के सोशल्स जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, तू जाने दो। एक फिल्म का टाइटल सॉन्ग, ये गीत ना कभी कोई फरमाइश करेगा, ना फरियारी सॉन्ग है, ना शादी वाला सॉन्ग है, ना भाई बहन के सॉन्ग है, ऐसे कोई गीत नहीं, ऐसा एक गीत नहीं जो आप कह सकते हैं कि किसी के लिए मैं फरमाइश करूं। हाँ, अपने दुश्मनों के लिए अगर आपको दुश्मन है और उन दुश्मनों के लिए, या वो एक दुश्मन जो है आपका, व्हाट इट नीड होप, आप फरमाइश कर सकते हैं लेकिन गीत मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक फिल्म तो फिल्म बिल्कुल फ्लॉप मूवी, लेकिन फिर भी अगर देखा नहीं तो यही माफ कहेगा, जिस ऐसे नहीं कि फिल्म देखने लायक नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म जो है फ्लॉप साबित हुआ है। फिल्म का नाम बुलिट, और बुलिट का टाइटल सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ। गाने वाले हैं किशोर कुमार, आनंद बख्शी जी ने गीत को लिखा, और राहुल बर्मन, आर डी बर्मन संगीतकार। पेश करता हूं वो नगमा, बुलेट का टाइटल सॉन्ग।

देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है और वो दिखा रहे हैं उन्हें गोली, एक बुलेट। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं और वो भी आर डी बर्मन के साझ और संगीत पर। 1977 का फिल्म बुलेट से हमने नगमा को निकाले हैं। फिल्म तक जिसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गोल्डी आनंद यानी कि विजय आनंद है, देवानंद साहब जी, परवीन भाभी, कबीर बेदी, राकेश रोशन का एक फिल्म। उम्मीद तो आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनौलों की नगमाओं के साथ आप काफी मजा ले रहे होंगे। एक गीत की ओर आपको ले चलेंगे, ये फिल्म कहीं और चल का एक नगमा है। कहीं और चल 1968 का मूवी है, 1968। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक मस्ती भरी गीत, शंकर जयकिशन संगीत का, रफी साहब जी की आवाज, पेश करता हूं।

गुलाब भी खिलेगा शायद जिसका नाम है प्यार। ओ लक्ष्मी, ओ सरसू, ओ शीला, ओ रजनी। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए, और वो भी शंकर और जय किशन के साज और संगीत पर। कहीं और चल फिल्म का नाम, नीह दीनाख्तन से 1968 का मूवी। फिल्म ये भी डायरेक्ट किया गया है देव साहब जी के छोटे भाई गोल्डी आनंद विजय आनंद जी के जरिए, और देवानंद आशा परेख का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत आप तक पेश करने जा रहा हूं। इस गीत के बाद ब्रेक होंगे 7 बजे का, और तमाम सूचनाओं के बाद जैसे मैंने कहा प्रोग्राम में अफसोस के साथ ही कुछ मृत्यु समाचार भी रहेंगे। आखिरी गीत जो है चलाने जा रहा हूँ किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, और राहुल बर्मन जिसका संगीतकार है। 1965 का मूवी वॉरंट से गीत निकालेंगे, प्रमोद चक्रवर्ती जी का डायरेक्ट किया हुआ, और देव आनंद और सिनतमान का मूवी। रुक जाना ओ जाना, जरा हमसे दो बातें करते जाना।

0: Live vanuit de hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन्नी खंतखियार औत, बेटी श्रीमती शर्ली गोपाल की मां, दामाद श्रीमान जगदीश गोपाल के सास सुदेश गोपाल, रेशमा शक्कौरी गोपाल और अजय गोपाल के नानी शालिनी गोपाल, विनोद चक्कौरी और शरोजना गोपाल की ननिया सास, श्रेया, ईशिका, निखिल, ऐलाश, सरफयाश और शयाना गोपाल की पर आजी, रिशानी और रितिका शक्कौरी की पर नानी, अम्स्टर्डम लुवी क्रिस्पेन स्त्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में पहले फ्लामिंगो स्त्रात के निवासी थी। अम्स्टर्डम से परिवार गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 91 साल के आयु में एनन्नी खंतखियार औत, बेटी श्रीमती शर्ली गोपाल की मां, दामाद श्रीमान जगदीश गोपाल के सास सुदेश गोपाल, रेशमा शक्कौरी गोपाल और अजय गोपाल की नानी शालिनी गोपाल, विनोद चक्कौरी और शरोजना गोपाल की ननिया सास, श्रेया, ईशिका, निखिल, ऐलाश, सरफयाश और शयाना गोपाल की पर आजी, रिशानी और रितिका शक्कौरी की पर नानी, अम्स्टर्डम लुवी क्रिस्पेन स्त्रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंदरदाख हालफ फीर किए जाएंगे वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैख 272 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 45 75 06 57 51 45 75। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार गोपाल और परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: मैं अभी आता हूँ, तुम इंतजार करना, जाना नहीं, समझी ना। सुन सुन सुन रे बलम, दिल तुझको
1: सुन सुन सुन रे बलम, ये दिल तुझको पुकारे। शारदा जी और दलेजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें, एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार शंकर जयकिशन, निकाले हैं मूवी 1966 नेह दिन से सिलसिला का मूवी प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत से हमने नगमा को निकाले। फिल्म जिसका डायरेक्टर शंकर मुखर्जी देव साहब जी ने काम किया है सहरा बानो के साथ, प्रेमनाथ शशिकला और दुर्गा खोटी मोराद साहब जी। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को। बैक टू द फ्यूचर आप

0: रहे हैं और आपको स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आप से फिर एक बार लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे से नौ आठ मिनट बाकी है सरी सात बजने में। आठ मिनट ऑफ द क्लॉक फन हाल्फ हो चला है। देव साहब जी का प्रोग्राम आज हम सजा रहे हैं और अगले हफ्ते इस महीने का जो आखिरी बुधवार होंगे 24 जूनी तो देव साहब जी का आखिरी प्रोग्राम भी हम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए। इनके मूवीज से नगमाएं जो देव साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है हमने हफ्तों से निकाल निकाल कर प्लेलिस्ट को सजाए हैं और उस प्लेलिस्ट से निकाल कर आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि आप को पसंद आएगा और नगमाओं के साथ जिस तरह से हम तो आप भी कुछ पुराने यादें जो इन संगीत के साथ जुड़े हुए हैं हम और आप मिलकर ताज़ा करते हैं हमेशा। व्हाट्सएप पर है मेरे प्यारे सुनने वालों कुछ लोग जो ऐप किए हैं जैसे कि हार्लेम का आइलिन, अम्सरडम सेंट्रम का प्रभा जी, इल्से जी, आइडन हेल्डर, सुशीला जी, आइट अम्सलफिन, आईफी आइट अम्सरडम, मिक आइडन हाग और मफराव एंड मनेर बिहारी आइट ब्रीदा। थैंक यू लेवल, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जिसमें होंगे एक नगमा अब की बार फ्रॉम द मूवी हीरा पन्ना। मेरे प्यारे सुनने वालों हीरा पन्ना 1976 का फिल्म है, निहतिन फिरन सीवंत और गीत जो है किशोर कुमार गाएंगे, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत है, राहुल बर्मन संगीतकार। मेरे प्यारे सुनने वालों मैं तस्वीर उतारता हूं पेश करता हूं।
1: जरा हंस के जरा और खिल

0: मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरे हुए हसीनों का। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनोलों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत किशोर जी ने गाकर सुनाए हैं, आरडी बर्मन के साज और संगीत पर। और हीरा पन्ना फिल्म का नाम, फिल्म इतनी हथिन फिर सीवंत, देवानंद साहब जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर, ये मूवी बिग ब्लॉकबस्टर मूवी। हीरा पन्ना सीमा तमन और राखी के साथ मूवी में काम किया है। और इन सभी के अलावा रहमान साहब जी भी हैं, धीरज कुमार, जीवन साहब जी, ए के हंगल, सुधीर पैंटल, कन्हैया लाल, एन नचूलखा जी, मनमोहन ऑफ 12 फटाफट। उजाला रेडियो है ये, मेरे प्यारे सुनो, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। देवानंद साहब जी के गाने, इन पर जो पिक्चराइज किया गया है मूवीज में, हम आप तक पेश कर रहे हैं। तो हीरा पन्ना के बाद दो साल हम नीचे जाएंगे, निहतिन ट्वीन से इवन तक 1972, मेरे प्यारे सुनो वालों, ये गुलस्तान हमारा फिल्म का नाम, ये गुलस्तान हमारा से गीत निकालेंगे। वंस अगेन किशोर कुमार अब की बार लता जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, और वो भी एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन के साथ और संगीत पर। गोरी गोरी गांव की गोरी गोरी पेश करता हूं, हियर ऑन यू आर ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओ अच्छे सुनो मेरी बात, सॉरी, अच्छे सुनो मेरी बात, किशोर कुमार और कोरस।
1: एक करी तो अरे ओ परिसो एरी नोखे आ रुक्सा अरे ओ डेंगा ए मुनमु

0: देखो तुम चोर हो।
1: हाँ?
0: तुमने चोरी की।
1: अरे बाप रे।
0: तुम सिपाही।
1: अच्छा?
0: मैं थानेदार। तुम भागो।

सुनो मेरी बात, एक बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे से नौलो हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और कोरस से आप सभी ने सुने हैं। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत और जिसका संगीतकार अयस्ते बर्मन सचिन देव बर्मन, गीत हमने निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों 1972 का मूवी फिल्म ये गुलिस्तान हमारा। फिल्म आत्माराम ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट जो किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद और शर्मिला टैगोर का एक फिल्म जिसमें सुजीत कुमार भी है, आसरानी साहब जी, प्राण साहब जी, ललिता पवर और कौन है, रमेश देव, यंकी दास, कमिनी कौशल, राज मेहरा, कैस्टो मुखर्जी, मुराद साहब जी, जोनी वोकर, डेनी डिंजोंगपा, इफ्तिकार और मनमोहन, सॉरी मैकमोहन, मनमोहन कोई और है और मैकमोहन कौन नहीं इसे जानते। हर एक मूवी में इनका नाम है मैक, लेकिन शोले में इनका नाम था सांभा। मेरे प्यारे सुनो लो, ये उजाला रेडियो है, 8 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 7 बजकर। लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। और मेरे प्यारे सुनो लो, आपको ये भी बतलाने कि मेरा जो प्रोग्राम है कैसे कब मैं आऊंगा आपके लिए, आप को एंटरटेन करेंगे, आज हूं कल भी रहेंगे प्रोग्राम में लेकर। प्रोग्राम दिल की आवाज कल रात्रि को 8 बजे से या मिसकिन आठ बजे से हम प्रोग्राम सजाएंगे 3 घंटे लगातार। हियर ऑन यू आर दिल की आवाज, शनिवार 20 तारीख को हम नहीं रहेंगे, एक बैनर साथ रख ट्विन तखीजुनी इन द आफ्टर नीट मैप लोकल प्रोग्राम आज सैटरडे नाइट फीवर। लेकिन अगले हफ्ते 24, 25 एंड 27 यानी कि बुधवार, गुरुवार और शनिवार, ये तीनों दिन रात्रि में प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे आपके लिए। जो सनावन बेनिकर मोर्ख बेनिकर मैं दिल की आवाज कोमंड सातरा नीत और अगले हफ्ते फोहन वेक दन बेनिकर खून अलदा, ठीक है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, वापस हम आपको ले चलेंगे 72 से हम जाएंगे निहंतिन फीरन सेस्टर की ओर 1964। फिल्म का नाम है शराबी और शराबी का एक हैप्पी सॉन्ग रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ निकालूंगा आप तक पेश करेंगे। रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी गीत मिलकर गाएंगे मदन मोहन के साज और संगीत पर। जाओ जी जाओ देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर और लुटेरे, क्या बात है।

या जाओ जी जाओ मेरे प्यारे सुनने वालों, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर और लुटेरे नाइटिंगेल आशा जी और रवि साहब जी का ये हैप्पी छेड़छाड़ सॉन्ग, रजिन कृष्ण जी का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों, और संगीतकार मदन मोहन। फिल्म का नाम शराबी और मूवी 1964 का है। निहत इन्फ्लुएंसेस राज ऋषि जी का डायरेक्ट किया हुआ, देव साहब जी का ये फिल्म मधुबाला के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है। और मैं देखता हूँ देसी हैरानी भी है, ललिता पवर, राम मोहन भी है, सुलक्षणा रविकंठ और बद्री प्रसाद, हिरेंद्र और चित्रा जी हटमार से भरूक डंकीवेल आपके आपके लिए, और अपने मोटर कार में सुन रहे हैं अमेरिका जो टोनी डंकीवेल टोनी फोड़ी एपिया यमुनी ऐप तैरने से तरह है दोस्त, तनी फरकेर करके ऐप कर लिए फिर चला लिए, ठीक है। लेकिन बेहद खुशी है हम कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और ऐप के जरिए मुझे ये बता रहे हैं, और क्यों ना आप एंजॉय करेंगे नगमाएं जो पिक्चराइज किया गया है देव साहब जी पर, बहुत खूबसूरत है, चाहे वो नए हो इनके मूवीज या पुराने मूवीज, बहुत सारे खूबसूरत नगमाएं हैं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है। और कारण ये भी है कि मैं इनका प्रोग्राम बना रहा हूँ आल सेस वीक, और अगले हफ्ते फाइनल एडिशन है देव साहब जी का जो हम सजाएंगे बनाएंगे हियर ऑन यू आर। कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के, एक प्यारा सा नगमा जो काफी पॉपुलर है, लता जी और किशोर कुमार जो मिलकर गाएंगे। आनंद बख्शी जी ने लिखा और संगीतकार मेरे प्यारे सुनो, राहुल डे बर्मन आर डी बर्मन पंचम दा हरे राम हरे कृष्ण फिल्म का नाम, और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1972 का है। नीह तीन तवीन सीवन तक खूबसूरत गीत हीरान यू आर पेश करता हूँ।

कांची रे कांची रे, प्रीत मेरी सांची, लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए हैं आर जी बर्मन के साज और संगीत पर। निकटतम ट्वेंटी 1972 का मूवी फिल्म हरे राम हरे कृष्ण से हमने नगमा को निकाले। देव साहब जी ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर है। मुमताज भी है, सीना तमान, जूनियर महमूद, राजेंद्र नाथ, अंशला सखदेव, इफ्तखार, प्रेम चोपड़ा, किशोर साहू, राज किशोर, इंद्रानी मुखर्जी, सुधीर और टोनी भैया। आप इन रात आप वो तो मैं ना रह ले, हम वैसे ना पढ़ ली मान, तू खून अपन टाइन में बैठ के प्रोग्राम सुने हैं इत्मीनान से। वही हम सोची कैसे तू ऐप कर सके, गाड़ी चलावे और ऐप करे मार्सो इस टोनी नीत। एंजॉय टोनी। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो वालों फ्रॉम द मूवी किनारे किनारे, और ये मूवी 1963 का है, निहतिन द्रियन सेस्तक, और गीत जो हम आप तक पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी किनारे किनारे, देख ली तेरी खुदाई गीत का बोल, और ये फिल्म से जो गीत निकाल रहा हूँ द मैन विद द टू गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, तलत महमूद जी गीत गाएंगे, नया शर्मा जी का लिखा हुआ ये डर्ट भरा गीत है, जयदेव संगीतकार। मेरे प्यारे सुनो लो पेश करता हूँ गीत सेवा में, हियर ऑन यू आर।

देख ली तेरी खुदाई। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, बस मेरा दिल भर गया। द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, तलत महमूद जी की आवाज, नयन शर्मा जी का लिखा हुआ ये डट भरा गीत तलत साहब जी ने गाकर सुनाए हैं। जयदेव की सांझ और संगीत पर 1963 निहत इंद्रियन से सख का फिल्म किनारे किनारे से हमने नगमा को निकाले। और खास बात यह है कि तमाम नगमाएं जो ये मूवी में हैं, इनका लिरिक्स लिखा गया है नयन शर्मा जी के जरिए, क्योंकि ये फिल्म का भी प्रोड्यूसर है चेतन आनंद, जो देव साहब जी के बड़े भाई हैं। इन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है। देवानंद मीना कुमारी सुंदर का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं, उसके बाद 8 बजे के ब्रेक। ब्रेक के बाद नतुर्लक आप सभी के सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे विद सम मोर ओल्ड सॉन्ग्स, द 60s और द 50s का। और अगर वक्त रहा, मार डटेंगे कि नहीं, दा गाँव वीर तो रखना दे यार 70। धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं और इनके पुराने गीत और मूवीज की ओर। फिल्म का नाम बाजी, जिसमें से हम इस घंटे का आखिरी गीत निकालेंगे। ये फिल्म ओ बॉय ओ बॉय डी साउथ 1951 निहति नैनन फाइफ्त, हमारे प्रिय सहील लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे, और जिसका संगीतकार है सचिन देव बर्मन। कि दिल ये क्या चीज है, फिल्म का जो प्रोड्यूसर और एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया है, और गीता बाली, कल्पना कार्तिक, केएन सिंह, इन सभी ने देव साहब जी के साथ फिल्म में काम किया है। आखिरी गीत और मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों।

जीवन के सफर में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में। या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, मुनीम जी का ये नगमा, किशोर कुमार की आवाज, सहेल लुधियानवी जी हमारे प्रिय, इन्होंने गीत को लिखे और संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। मुनीम जी फिल्म 1955 का है, नहीं 1955। और देखता हूं तो सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है ये फिल्म मुनीम जी, और गाने सभी लाजवाब बेमिसाल हैं, खूबसूरत रोल देव साहब जी का, और नालिनी जयवंत, प्राण साहब जी, निरूपा रॉय, अमिता। मेरे प्यारे से लोग 11 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, आपका सेवा हम कर रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट किवाड़ के स्टूडियो रोहतनाम से। बुधवार का ये पॉपुलर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर सेवा में हम पेश कर रहे हैं, रात्रि में 9 बजे आपका साथ हम देंगे, उसके बाद हम यहाँ स्टूडियो से रुखसत होंगे। और जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुनने वालों, कल 18 तारीख जून को आपका सेवा करने चले आएंगे, एंड इन प्रिंसिपल वनाफ 8 uur टोट मेट 11 uur, लाटवन ने दार मारो भाव। लेकिन हो सकता है कि हम 9 बजे भी शुरू करेंगे, माना तो ठीक नोखनी थे, जिस तरह से भी होंगे प्रोग्राम 3 घंटे का हम सजाएंगे आप सभी के लिए। शनिवार को 20 तारीख जून को हम नहीं रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लोकल का, वो प्रोग्राम हम फिर पेश करेंगे अगले हफ्ते 27 जून को, जो इस महीने जून का आखिरी शनिवार है, जाकर पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो आज हूँ कल भी रहेंगे, शनिवार को नहीं, एंड फॉलोइंग वीक बनकर वुंसडे डोनरडे एंड सैटरडे। देव साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आज सजा रहा हूं और अगले हफ्ते वुंसडे 24 जून को फाइनल एडिशन देव साहब जी का हम पेश करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से, प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में। और आप सभी मजा ले रहे हैं मुझे मालूम है, लोग ऐप करके बता रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अब इस घंटे में नगमाए फ्रॉम द 60s एंड 50s पेश करेंगे, और अगर वक्त रहा या ना खा वो इवन जस्ट थ्रू हील कोर्ट इवन थ्रू नॉट द 70s, ठीक है। अकेला हूं मैं इस दुनिया में, एक पॉपुलर सॉन्ग रफी साहब जी का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, और वंस अगेन संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। बात एक रात की, फिल्म का नाम बात एक रात की, और ये फिल्म 1962 का है, नेहंतिन ट्विन सिस्टर।

कलाकार एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम बात एक रात की, बात एक रात की। अजनीहतिन ट्विंसेस 1962 शंकर मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। और ये फिल्म में काम क्या है, एवरग्रीन सुपरस्टार वहीदा, सॉरी देवानंद और वहीदा रहमान साथ ने दिए हैं ये फिल्म में। जोनी वॉकर, चंद्रशेखर आसिद सेन और जगदीश सेठी भी फिल्म में है। लेसर का शारदा, सेंट मार्ट का पूनम और सूरीनाम का अनिता। दामन्स थैंक यू लिवेल, धन्यवाद आपके आपके लिए चून करने के लिए। एंजॉय बैक टू द फ्यूचर, जिसमें देवानंद साहब जी के नगमाए हम पेश कर रहे हैं। अपनी तो हार एक तूफान है, अगले गीत का बोल है। एक डर भरा गीत है जहां तक मैं देखता हूं, डर भरा गीत, शिकवा शिकायत सॉन्ग, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी की आवाज में गीत को आप सुनेंगे और वो भी एस डी बर्मन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम काला बाजार मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये फिल्म निहतिन सेसख का है। 1907 रफी साहब जी को पेश करता हूं सेवा में।

अपनी तो हर एक आह तूफान है। दलेजिन पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, ये दर्द भरा गीत, शिकवा शिकायत सॉन्ग शैलेंद्र जी का लिखा हुआ रफी साहब जी ने गाकर सुनाए हैं। सचिन देव बर्मन ने एसडी बर्मन के साथ और संगीत पर मेरे प्यारे सिनेमालो काला बाजार फिल्म का नाम, फिल्म इतनी खतीन सिस्तक मेरे प्यारे सिनेमालो 1907 का मूवी, देवानंद साहब जी प्रोड्यूसर और एक्टर ये फिल्म का, और डायरेक्टर इनके छोटे भाई गोल्डी आनंद विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म में काला बाजार में देव साहब जी ने काम किया है वहीदा रहमान के साथ, नंदा भी है रशीद खान, छोटे भाई विजय आनंद भी है, किशोर साहू, लीला चिटनिस, मदनपुरी हेलन। कविता जी आइड बी कैपल न्यूयॉर्क सिटी, डंकीवेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए, एंजॉय कविता। ऑल दैट प्ले फ्रोलक कितनी दूर दूर लोग चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, और कविता जी हमेशा जब ही सुनते हैं ऐप करते हैं, धन्यवाद। तू रूप की रानी मैं तो चोरों का राजा, पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, और मिलकर गाएंगे शंकर जयकिशन के साहज और संगीत पर द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद और मेलोडी क्वीन लता जी। फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा और टाइटल सॉन्ग, ये फिल्म 1962 का है, नहीं, टाइटल सॉन्ग को पेश करता हूं, हीरान यू आर।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा, क्या तेरा मेरा प्यार निराला, द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद और लता जी की आवाजें, हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ ये टाइटल सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं शंकर जयकिशन के साथ और संगीत पर। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म 1962 का है, निहतिन ट्विंस, डायरेक्टर रवल साहब जी और देवानंद वहीदा रहमान, हीरालाल जगदीश राज, सुंदर मनोरमा का एक फिल्म। घर की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे से सुनो, ठीक सरे 8 का वक्त है, 35 हालव नीह 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे और बॉय ओ बॉय कुछ और भी दिलचस्प नगमाएं हैं जो 9 बजे तक आप के लिए हम पेश करने वाले हैं। हम आपको ले चलते एक मस्ती भरी गीत की ओर, एक गीत जो हम निकालेंगे फिल्म जिसका नाम है 16वां साल। ये फिल्म 1958 का है, 58 का है, हाँ जी 16वां साल 1958 का मूवी। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत रफी साहब जी गाकर सुनाएंगे एस दे बर्मन के साज और संगीत पर। कि ये तो है वो देखिए यही तो है, पेश करता हूं
1: यही तो है

यही तो है वो, हाँ यही तो है वो, देखिए यही तो है। रफी साहब जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। सचिन देव बर्मन की साझ और संगीत पर, फिल्म का नाम 16 साल और ये फिल्म 1958 का है। निहतिन अख्तन फैफ्तर, राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया है, देवानंद वहीद रहमान इन दोनों का एक फिल्म जिसमें टुनटुन और सुंदर भी है। मेरे प्यारे सुनो, फिर एक बार आपको इतला दें कि कल रात्रि को प्रोग्राम हम सजाने आएंगे दिल की आवाज, और वो भी 8 बजे से 11 बजे। मारत कंसूमर सेन दतिकर फनी है तो 12 बेन तत्वीत एक नुखनीत 100% सीकर। मैं काम में बिजी हूँ और कोशिश करूँगा वो काम खत्म करने का, उसके बाद तुरंत यहाँ हम स्टूडियो में हाजिर रहेंगे। मारत कंसूमर सेन दतिक नुख तत उर्चे नोड है, जैसे भी हो मैं रहूंगा जरूर लेकर प्रोग्राम कल मोर्ख 8 यूनी दिल की आवाज लेकर, और आने वाले शनिवार 20 नंबर नीत मेट सैटरडे नाइट फीवर हम नहीं रहेंगे। एंड फॉलोइंग वीक दन बेन कर वीर वुंसडाग 24 डोनरडाग 25 एंड सैटरडाग 27 तीनों दिन हम रहेंगे लेकर आपका पॉपुलर और मनचाहत प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, दिल की आवाज और सैटरडे नाइट फीवर हियर ऑन यू आर। और सभी लाइफ है मेरे प्यारे सुनने वालों, सभी लाइफ हम बनाएंगे सजाएंगे, और अगर आप साथ देंगे तो और भी मजा आएगा। अगले गीत का बोल है आंखों में क्या जी, और दोनों जो मिलकर ये गीत गाएंगे है हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग, और जिसका संगीतकार है एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन। 1957 1975 का फिल्म 9-2-11 से ये नगमा निकाल रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ हियर ऑन यू आर।

बादल, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर, एस डी बर्मन के साज और संगीत पर, मेरे प्यारे सिनेमालो 1957 का फिल्म 9-11 से हमने नगमा निकाले हैं। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गोल्डी आनंद, विजय आनंद और देवानंद साहब जी और कल्पना कार्तिक का एक फिल्म, जीवन साहब भी है, शशिकला, ललिता पावर, मदनपुरी और रशीद खान। और कल्पना कार्तिक जी देव साहब जी के पत्नी। तो दोनों ने मिलकर ये मूवी में काम किया है और बहुत सारे और मूवीज में दोनों ने मिलकर काम किए। फिलहाल तो मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा गीत सुनाना चाहूंगा, इसलिए हम तुरंत प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। मैडम उतिकवल इव स्पीकर, हमने क्या तैयार करके रखा है? अच्छा जी, वो नगमा, एक नगमा रफी साहब जी जो गाकर सुनाएंगे, शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत है, संगीतकार शंकर और जय किशन, फिल्म का नाम लव मैरिज, और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों 1959 का है, निकाल रहा हूं ये नगमा रफी साहब जी की आवाज़।

जैसे परी, ये सुबह मस्त भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद

0: रवि साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो लो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग रवि साहब जी ने गाकर सुनाए हैं। शंकर जयकिशन संगीतकार, मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम लव मैरिज, और लव मैरिज जो फिल्म है 1959 नीहती नीह नन फाइव तक का है। सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है ये फिल्म लव मैरिज, और देव साहब जी का फिल्म है विद माला सिन्हा हेलन अभि भट्टाचार्य। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम के एंड की ओर, मेरे प्यारे सुनने वालों, और हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। होता है। एक गीत प्रेम धवन जी का लिखा हुआ, सही लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत है, और एक नगमा जो मिलकर गाएंगे किशोर कुमार और गीता दत्त, वो भी एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम है जाल, मेरे प्यारे सुनने वालों, और जाल जो है 1952 का मूवी है। 1953 पेश करता हूं गीत दे भी चुके हम दिल नजराना।
1: नजराना दिल का

0: दिल का
1: दे भी चुके हम दिल का नजराना। गीता दत्त जी और किशोर कुमार की आवाजें, हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी, इनका लिखा हुआ गीत, रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं एस डी बर्मन के साज और संगीत पर। 1952 का फिल्म जाओ से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गुरु दत्त और देव साहब जी और गीता बाली का एक फिल्म जिसमें केन सिंह भी है, जॉनी वॉकर। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ। इस आखिरी गीत के बाद हम यहाँ से रुक सकेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का सजाया हुआ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, जिसमें थे बहुत सारे नगमाएं देव साहब जी पर जो पिक्चराइज किया गया है, आप सभी ने सुनते वक्त भी पसंद की है। हम आप सभी से कल मिलेंगे और ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर अगले हफ्ते फिर हम सजाएंगे और देव साहब जी का आखिरी प्रोग्राम हम बनाएंगे अगले हफ्ते। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। किशोर कुमार का एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निकालेंगे फिल्म प्रेम शास्त्र, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर बी आर इशारा और सीनाथमन बिंदु और देव साहब जी का एक फिल्म।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

यहीं से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम उजालास कॉफी चाय मिदक शो। यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। एन हेले गुई मिदक, वेलकम ऑफ दिस वुंसडा 17 यूनी आ शाम का वक्त। कितना मोय वेर है ना, कितना बिसाल वेर है का। आज इस दिन 17 यूनी, आज बुधवार 17 तारीख जून का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुनने वालों। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मैथ आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में बहुत लुख्तग ऑनवर्ड हम आपसे बताने वाले हैं। नाउ एक सर्कल बीच ओवर माय एगन वर्ड्स। आज है 17 तारीख जून। हेडलाइंस फॉर वंडाग। होंडर्डन मेंसन नामन डेल आन अ स्टिल टोख ना हेट ट्रागिशे वर्केर्सओंगेवाल इन सेलांड वारबाय मेर्डरे स्लाख्टोफर्स फीलन। हेट WK फुटबाल ब्लाइफ नेदरलांड बेजिग हौडन हेट गेलाइकस्पेल फॉन ओरांजे टेगेन जापान। अनालिस्टन कैकेन वोरुइट नार दे वोलगेंडे ग्रोप्सवेडस्ट्रैड आनस्टाँडे ज़ादरदाग ओम 7 उर। एन या मेसी हेफ गेस्पेल्ड मेट अर्जेंटिनिए आत्से वेरे से वेरे फ्रुकु फ्रुकु एन हेफ 3 केरे गेस्कोर्ड Toen na de klikken. Adviseurs van het kabinet pleiten ervoor Oekraïne na een toekomstig bestand sneller richting EU-lidmaatschap te begeleiden. Innovatie en technologische onafhankelijkheid staan centraal tijdens een grote high-tech bijeenkomst in Den Haag. De G7-landen hebben in Frankrijk opgeroepen tot het staakt het vuren in Libanon en spreken steun uit voor het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De G7 kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor Oekraïne, waaronder extra militaire ondersteuning en strengere sancties tegen Rusland. Het Rode Kruis waarschuwt voor mogelijke voedsel- en watertekorten als gevolg van een verwachte sterke El Niño-periode. Wereldleiders spreken steeds nadrukkelijker over energiezekerheid en alternatieve handelsroutes nu de geopolitieke spanningen aanhouden. Goedemiddag Nederland, welkom bij Ujala's middag Coffee Chai Show. Aaj boedwaar, de week is halverwege, ha? Beachhaftaiga. En misschien is dit precies het moment om even rustig adem te halen. Een kop koffie of chai erbij te pakken en samen te kijken naar wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Mijn Lloyd Mahabir zometeen sluit hier aan. Anand Chandrika Singh. Fijn dat je luistert. उजाला रेडियो के प्रोग्राम में हम सुनने वालों के नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं और ये गाने वाला है राज गणेश के आवाज़ में हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं। सॉरी फॉर कि तुके कोई जीवन साथी मिलल हैगा या तू मांगे कोनो जीवन साथी ई जीवन में तोर ना मिलल हैगा जीवन साथी तो दोबारा जन्म लिए तो शायद मिल जाएगा मोय जीवन साथी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। राज गणेश की आवाज में आप सुनने को जा रहे हैं। गरमा मोई से सुनिए कि जन्म जन्म का साथ है

कितना मोई गाना है, कितना मोई से भी गाय से गया राज गणेश की आवाज़ में भी आपने सुने उजाला रेडियो पर सुन वालों पेश किया गया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा और इस जीवन में ना मिलेगा तो हम फिर जन्म ले पे मिल खातिन उजाला रेडियो ये है। वेलकम ऑफ दिस वुंगजमिदा 17 तारीख जून का प्रोग्राम में जिसमें हम लोग आज का समाचार आपसे बताने वाले हैं कि क्या भय रहेगा या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और आज है सेफ्टी यूनिट। बड़ा मोई दिन है आज। नेम ये कॉफी ऑफ चाय दबाए एंड लाइसर ना दिन में कि चलते चलते चलते चलते कभी ना अलविदा ना कहना ना ना ना ना ऐसे ना करिए।

गनवा जो इस तरह से सवन गाय से गए जैसे बनाए से गए म्यूजिकवा जैसे है गया इस गोन गवेल्डिग इट इस गोन या एन गनोट ओम नार टू लुइसन चलते चलते इट इस अ बीटी जैसी मार बिसाल बिसाल सुन वालो प्रोग्राम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते जाइए सुन रहना आज का प्रोग्राम हम आपसे कल नहीं मॉर्निंग इज अमित हियर इन कॉफी चाय Kul Amit Jairam Rehega van 12 tot 1. En ik ben er vrijdag weer met koffie, chai, koekoe of wat je ook ervan wil maken van dit programma. Janam Janam Kasat het Tumara Hamara. Rajesh Ganesh ke awaaz mein fir hum aapko sunate hain. Isi ke saath hum izazat chahte hain. Mooi se rahiye.

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुन वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आप सुनते रहना। चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl हर एक काम काज के लिए।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनाओ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आ जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।